0: मीटर्स है उन्होंने,
1: मीटर्स है
0: 3017 at Lloyd Lewis, 635, 5 star India Juliet. It's a white Kia Optima.